0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: శుభోదయం ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం తరతరాల తరగని ఆనందం అలా

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 8 గంటలు కాసేపట్లో సమాచార ప్రభాతం వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాథ్ మై జయా భారతి. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की. भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी. दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया. सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया. और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की.

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत पीएम जय,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@airnewshindi.com।

0: हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हमले के कारण दो मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
3: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
4: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
5: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सनत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना

0: मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यह कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
1: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
2: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా వివిధ భారతి ప్రోగ్రామ్స్ వినాలనుకుంటున్నారా? ఇట్స్ సింపుల్. వెంటనే న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని లైవ్ రేడియో ఐకాన్ క్లిక్ చేసి వివి తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకుని నాన్ స్టాప్ మ్యూజిక్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ని ఎంజాయ్ చేయండి. వివిధ భారతి ఆకాశవాణి తెలుగు, తరతరాల తరగని ఆనందం, అలరించే సంపూర్ణ వినోదం.
6: జనరంజని శ్రోతలు లేఖలు అలాగే మెయిల్ ద్వారా కోరినటువంటి పాటల్ని ఇప్పుడు మనం వినబోతున్నాం. ఇది 102.8 FM తరతరాల తరగని ఆనందం, అలరించే సంపూర్ణ వినోదం. ఇక ఇప్పుడు మనం వినబోయే మరొక పాట మెకానికాలుడు చిత్రంలో నుంచి జుమ్మనే 9వ ఏట. రిక్వెస్ట్ చేసిన వారు గంగాధర్ శ్రీనివాస్ గారు, వీలసాగర్ విలేజ్ బోయిన్పల్లి మండలం నుంచి రాజన్న సిరిసిల్ల డిస్ట్రిక్ట్. ఈ పాట మీకోసం.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है चित्रलोक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन एक बार और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज है श्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि। अब ये वीर चंद्र गढ़वाली जी कौन थे? ये एक ऐसा नाम है जिसने उत्तराखंड

के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्म लिया और अपने निर्भीक और स्वाभिमान स्वभाव के कारण इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना बड़ा सारा योगदान दिया। अब इनका जो पहली जो भर्ती हुई वह ब्रिटिश सेना के रॉयल गढ़वाल राइफल्स में हुई। यहाँ पर उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। गढ़वाली यह नाम इतिहास के पन्नों में इस तरह से अमर हो गया क्योंकि इस नाम ने पेशावर कांड के नाम से इस नाम को जाना जाने लगा, यानी 23 अप्रैल 1930 की उस तारीख के साथ नाम है पेशावर कांड। पेशावर का वह किस्सा अख्वानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार के साथ निहत्ते शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय ब्रिटिश कैप्टन के रिकेट ने गढ़वाल राइफल्स को निहत्ते सत्याग्रहियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का एक आदेश दे दिया। उस समय हवलदार मेजर चंद सिंह गढ़वाली अपनी जान और भविष्य की परवाह किए बिना बड़ी कड़कती आवाज में उन्होंने चिल्लाया और हुक्म दिया, गढ़वाली सीज फायर, गढ़वाली हम निहत्थों पर गोली नहीं चलाते। सैनिकों ने उनकी बात मानी और बंदूकों की नाल को नीचे कर लिया। ऐतिहासिक इनकार के बाद ब्रिटिश हुकूमत को तो उन्होंने हिला दिया। इसके बाद उन पर कोर्ट मार्शल चला, उम्र कैद की सजा हुई, 14 वर्ष उन्हें जेल में बिताने पड़े। बाद में महात्मा गांधी ने उनकी निष्ठा और साहस से प्रभावित होकर कहा था, यदि मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता तो देश कब का स्वतंत्र हो गया होता। 1 अक्टूबर 1979 को राष्ट्र का यह महान सपूत चिर निद्रा में लीन हो गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली केवल एक फौजी नहीं बल्कि विवेक और राष्ट्र प्रेम के वो प्रतीक थे जिन्होंने सिखाया कि देशभक्ति के प्रति निष्ठा किसी औपनिवेशिक हुक्म से बड़ी होती है। उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें सादर नमन करता है।

0: हम सुन रहे थे दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज में, जिस गीत को लिखा प्रसून जोशी ने, एआर रहमान ने जिसे संगीतबद्ध किया, हमने जिस फिल्म में इसे लिया गया है वह फिल्म है रंग दे बसंती। आइए सुनते हैं ये एक संदेश।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंग कर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। अब चित्रलोक में वक्त है कि एक कहानी छोटी सी आपके साथ साझा की जाए। कि एक समय की बात है, बहुत धनी और जिज्ञासु राजा थे, तो उनकी एक आदत थी कि वो परीक्षाएं लिया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और वह वहीं एक दूसरे पत्थर के पीछे छिप गए अपने मंत्रियों के साथ।

0: में ये देखने के लिए कि उस विशाल पत्थर के आसपास से गुजरने वाले निकलने वाले लोग क्या करते हैं। अब वहां से कई लोग निकले तो सबसे पहले कुछ धनी व्यापारी और दरबारी निकले, उन्होंने पत्थर को तो हटाया नहीं और अगल बगल से निकल गए। और थोड़ी देर के बाद में वहां से निकले कुछ ऐसे लोग जो सामान्य थे, तो उन्होंने बड़ी गुस्सा किया, बड़ा गंदा गंदा बोला। उन्होंने कहा, बड़ा खराब राजा है, इतना बड़ा पत्थर रखा है, इसे भी नहीं हटवा सकता। क्या काम का राजा है, क्या काम के दरबारी है, बस हमसे तो कर लिया जाता है, हम कर दिए रहते हैं पर काम कुछ नहीं होता। राजा ने इस बात को भी सुना और उसके बाद में पर किसी ने पत्थर नहीं हटाया। अब थोड़ी देर के बाद में एक किसान वहां से निकलता है। उस किसान के हाथों में बहुत सारी सब्जियां हैं जिसे वह बाजार लेकर जा रहा है बेचने के लिए, लेकिन वह देखता है बीच में एक बड़ा पत्थर है। वह उस पत्थर को हटाने के लिए अपने हाथ की सब्जियां पहले नीचे रखता है और उसके बाद उस पत्थर को हटाने लगता है। पत्थर हटाने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि बड़ा पत्थर है, पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन उस पत्थर को धीरे धीरे करके वह लुढ़काकर सड़क के उस ओर रख देता है। और जैसे ही वह पत्थर हटाता है, उस पत्थर के नीचे उसे एक थैला मिलता है और उस थैले को खोलते ही वह पाता है कि उसमें कई सारे सोने चांदी के सिक्के रखे हुए हैं और वह खुश हो जाता है। तभी उसे एक चिट्ठी भी मिलती है और उस चिट्ठी को जैसे ही वह पढ़ता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है क्योंकि वह चिट्ठी सामान्य चिट्ठी या सामान्य पत्र नहीं था, राजा के द्वारा दिया गया पत्र था। और उसमें यह लिखा था कि आपने इस सम्मान को चुना है क्योंकि आपने देश की बाधाओं को हटाने का प्रयास किया है, तो राष्ट्र देश आपके लिए सम्मान रखता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे पत्थर हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे शहर में, कभी कभी हमारे देश में मिलते हैं और हम उन्हें हटाने की बजाय उनसे ही लड़ बैठते हैं। विचार कीजिएगा, हमने कितने पत्थर हटाए, इस बात का विचार करना है ताकि राष्ट्र सुरक्षित हो सके। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक दिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार दिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: लेते एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में हमने सुनाई आपको एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी कोई छोटा बड़ा पत्थर हमारे रास्ते में आए तो उसे हम खुद हटा लेंगे, ना कि हम दूसरों को उस बात के लिए कोसेंगे, है ना। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत भाग मिल्का भाग फिल्म से, श्रेया घोषाल और जावेद बसीर ने इसे गाया। प्रसून जोशी के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत है। हम आज का दिवस यानी 1 अक्टूबर का दिवस बड़ी प्रसन्नता के साथ मना रहे हैं, क्योंकि आज एक और बड़ा प्यारा सा दिवस है, वह है मिलिट्री नर्सिंग दिवस। और आज हुई थी मिलिट्री नर्सिंग की स्थापना। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की स्थापना का दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 1926 को भारतीय सेना के तहत एक स्थायी नर्सिंग सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी, जिसे उस समय इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का नाम दिया गया था। यह इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 1 अक्टूबर 1926 से आरंभ हुई। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस विद अ स्माइल, यानी मुस्कुराते हुए अपना कार्य करना। महत्व की बात यह है कि भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी और पूर्णतः महिला अधिकारी कोर में से एक संस्था यह है, जो युद्ध में और शांति में दोनों समय सैनिकों और उनके परिवारों की चिकित्सा की सेवा के लिए समर्पित रहती है। तो हमारी ओर से मिलिट्री नर्सिंग दिवस पर मिलिट्री नर्सिंग दिवस में काम करने वाली प्रत्येक महिला को, अब तो पुरुष भी उसमें होंगे, उन सभी को बहुत सारी बधाइयां और धन्यवाद सेवाओं के लिए।

हम सुन रहे थे ये गीत द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से एआर रहमान सुखविंदर सिंह की आवाजों में समीर के बोल और एआर रहमान के संगीत के साथ। हम लोग कई बार कई लोगों को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इंसान, इसका व्यवहार ऐसा ही होगा और इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये गरीब ही होगा। अब एक छोटी सी घटना घटी कि एक बालक आइसक्रीम लेने के लिए गया और वहां पर पहुंचा तो उसने पूछा कि सबसे सस्ती आइसक्रीम कौन सी है, तो उसने कहा 50 रुपए वाली। अब ये जो महिला थी वो उसको आइसक्रीम देने के लिए खड़ी हुई तो उसने कहा कुछ और है जो इससे सस्ता है, तो उसने कहा हाँ एक 35 रुपए वाली है। इस बार उसका रवैया थोड़ा कड़क था और उसने उस कड़कता के साथ उस बालक को कहा हाँ 35 रुपए की है, चाहिए है तो लो नहीं तो जाओ यहां से। उस बालक ने चुपचाप उस आइसक्रीम को ले लिया, आइसक्रीम ले रहा है, खा रहा है, वो महिला उसे देख रही है और बार बार थोड़ा चिढ़ भी रही है, लेकिन उस चिढ़न के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है। कारण जब वह बालक उस महिला को उस आइसक्रीम का पैसा देने आता है तो वह उसे 50 रुपए ही देता है, कहता है 35 रुपए आइसक्रीम के और 15 रुपए हमारी तरफ से आपके लिए। वह महिला निशब्द हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती है। इसीलिए जय कहते हैं कभी किसी को जज ना करें, कभी किसी को किसी की बात किसी को लेकर निर्णयात्मक रूप से ना पहुंचे, पहले समझें, जानें, विचारें। आज के चित्रलोक में बस इतना ही, आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे दम लगा के हईशा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में वरुण ग्रोवर के बोल और अनु मलिक के संगीत के साथ यह गीत आज्ञा दीजिए कार्यक्रम चित्रलोक से। नमस्कार।

भारत का सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

जिसने भी सचिन देव बर्मन का संगीत सुना वो उस संगीत के माधुरी में भीग कर वाह कर उठा। दशकों पहले रचा गया उनका संगीत आज भी जवां है, हसीन है।

0: प्यार के मन।
1: हिंदी और बांग्ला की 100 से भी अधिक फिल्मों के लिए संगीत सृजन करने वाले सचिन देव बर्मन संगीतकार बनने से पहले कोलकाता रेडियो स्टेशन पर गाया करते थे। उनकी गायी रचनाओं पर बांग्ला लोक संगीत और भारतीय सुगम शास्त्रीय संगीत का प्रभाव झलकता था। सन 1932 में रिलीज हुआ था सचिन देव बर्मन की गायी रचनाओं का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर सन 1906 को कोमिला में हुआ था। उनके पिता नवद्वीप चंद्र देव बर्मन और मां निरुपमा देवी का संबंध राजघराने से था। सचिन देव बर्मन अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। कोमिला के विक्टोरिया कॉलेज से बीए करने के बाद सचिन देव बर्मन ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। 1925 से 1930 के बीच उन्होंने गायक मन्ना डे के चाचा केसी डे से संगीत की शिक्षा ली और कालांतर में भीष्मदेव चट्टोपाध्याय से। इसके बाद संगीत जगत के कई और उस्तादों से संगीत सीखा, जिनमें उस्ताद बादल खां और उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब प्रमुख हैं। गायक के रूप में बांग्ला में उन्होंने 131 गीत गाए। म्यूजिक कंपोजर के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई थी बांग्ला नाटक सती तीर्थ और जननी से। सन 1937 में उन्हें पहली बार बांग्ला फिल्म राजगीर में संगीत देने का अवसर मिला। सन 1933 में उन्हें यहूदी की लड़की में पहली बार गाने का मौका मिला, लेकिन किसी कारण से उनके गाये गीत को रद्द कर वही गीत पहाड़ी सान्याल से गवाया गया। सन 1944 में सचिन देव बर्मन फिल्मिस्तान के शशधर मुखर्जी की सलाह पर मुंबई आ गए। शशधर मुखर्जी ने सचिन देव बर्मन को अशोक कुमार अभिनीत फिल्म शिकारी और फिल्म 8 दिन में संगीत देने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला सन 1947 में आई फिल्म दो भाई में।

0: सन 1949 में फिल्मिस्तान के बैनर तले सचिन देव बर्मन के संगीत से सजी उल्लेखनीय फिल्म आई शबनम, जिसके इस गीत ने उन दिनों धूम मचा दी थी।
1: ये दुनिया रूप की तो ये दुनिया रूप की चोर, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू।

बीच में एक समय ऐसा भी आया जब सचिन देव बर्मन का मुंबई के फिल्म जगत से मोह भंग हो गया था और वो कोलकाता वापस लौट जाना चाहते थे। शुक्र है ऐसा नहीं हो पाया और सचिन देव बर्मन मुंबई में ही रुक गए भविष्य की कालजयी धुनों

देव आनंद अभिनीत नवकेतन की जिन अन्य मशहूर फिल्मों में सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया उनके नाम हैं टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, काला पानी, मुनीम जी और पेइंग गेस्ट।

0: नहीं।
1: देव आनंद और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म काला बाजार में भी सचिन देव बर्मन ने सुमधुर संगीत दिया। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: खोया खोया जा।
1: फिल्म गाइड, देव आनंद और वहीदा रहमान के शानदार अभिनय, विजय आनंद के कसे हुए निर्देशन, शैलेंद्र के गीतों और सचिन देव बर्मन के सुरीले कालजयी संगीत के लिए आज भी भारतीय सिनेमा की अग्रणी फिल्मों में शामिल है।

0: भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार बिमल रॉय के साथ भी काम करते हुए सचिन देव बर्मन ने अपने संगीत सृजन की यादगार मणियों का योगदान दिया। ये फिल्में हैं देवदास, सुजाता और बंदिनी।
1: ओरे माजी

कालांतर में सचिन देव बर्मन ने बरस दर बरस देव आनंद अभिनीत कुछ और फिल्मों के लिए तैयार किया अपना मधुर संगीत। ये फिल्में हैं बंबई का बाबू, तेरे घर के सामने, तीन देवियां, ज्वेल थी।

सन 1969 में आई सचिन देव बर्मन के संगीत से सजी फिल्म आराधना। इसी फिल्म से उदय हुआ राजेश खन्ना के रूप में भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार का।

1970 के बाद के दौर में भी सचिन देव बर्मन के सुरीले संगीत से सजी कई फिल्में आईं। इन फिल्मों के नाम हैं तेरे मेरे सपने, शर्मिली,

प्रेमनगर, सगीना, चुपके चुपके, सजा, नौजवान, बाजी, हाउस नंबर 44, 16 साल, लाजवंती, चलती का नाम गाड़ी, बात एक रात की, डॉक्टर विद्या, जिद्दी, इश्क पर जोर नहीं, नया जमाना और गैम्बलर। 31 अक्टूबर सन 1975 को मुंबई में सुरों के इस साधक ने अपनी अंतिम सांस ली।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन पर। आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनके बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को उस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं।

0: हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने। और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की सहेली
1: नमस्कार सभी सखियों को, सभी सखाओं को, और साथ ही आज हमारे साथ हैं कौन? नेहा।
2: तो आरती जी, नेहा शर्मा का नमस्कार आपको भी और सभी सुनने वालों को भी।
1: बिल्कुल। और नेहा, आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक साथ आए ना।
2: और इतने सारे दिन लेकर आए
1: आज समझ लो दिनों की, यानी कि दिवस की बहार है पूरी।
2: हाँ।
1: तो हम लेकिन बीच बीच में बात बात में हम अपने दिवस की बात भी करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें बता देना चाहिए कि आज हम कौन कौन से विषय लेके आए, ताकि जो हमारे श्रोता है जो सुन रहे हैं वो अपने विचार हमारे साथ साझा कर सके। तो आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे। और साथ ही क्या लेकर आए हैं?
2: मुझे कुछ कहना है, मैं हमारे साथियों ने कहना शुरू कर दिया है, संगीत का जादू। हमने कहा था इस विषय पर कुछ कहें, तो उन्होंने इतनी सारी बातें कहनी शुरू कर दी है। और उपयोगी टिप्स में आज हम बात करेंगे वृद्ध जनों की देखभाल। हाँ, किस तरह से हो,
1: कैसे करनी चाहिए, कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई साइंस प्रोजेक्ट है।
2: हाँ,
1: बस कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है, अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सहायता करनी है, बस सहायता, एक सहायक की तरीके से हमें काम करना है, उनके अपने की तरह से काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे, साथ में बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुनने के बाद, है ना?
2: गीत
1: संगीत, क्योंकि संगीत का दिन है ना, तो संगीत के दिन की शुरुआत अगर गीत से करें तो सबसे बढ़िया।
2: तो कार्यक्रम में भी संगीत का जादू छाने देते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत आने देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: आरती जी, संगीत की तो इतनी बातें हो गई, लेकिन आपने जब कहा कि इतने सारे दिवस हैं
1: हाँ
0: तो दिन भी ऐसे घूमने लगा हमारा भी, क्या क्या है, कौन कौन से दिवस हैं जरा बताइए तो, सस्पेंस क्यों है इतना?
1: बिल्कुल, और इतने स्वादिष्ट दिवस है ना, हाँ, बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि देखो, एक तो है शाकाहार दिवस,
0: हाँ,
1: यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खाइए, फल फ्रूट, फल नहीं, माफ कीजिएगा, अब हम खा सकते हैं सब्जियां, बढ़िया बढ़िया, वैसे शाकाहार में फल भी आता है, सब्जियां आती है, सब कुछ आता है,
0: जब उपवास करते हैं तो बस फलाहार बोल के जो खाते हैं हम,
1: हाँ, वो फलाहार भी वही है, तो सब्जियां हरी हरी खा सकते हैं, बढ़िया, और हमारा खून भी बढ़ाती हैं, हमारा जो दिमाग है उसको भी शार्प करती है, तेज करती है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो शाकाहार में बहुत सारे गुण भी समाये। और साथ ही हम बात करेंगे, पूछेंगे बल्कि अपने साथियों से, जो श्रोता है उनसे, कि उन्हें क्या पसंद है, चाय की कॉफी, वैसे तुम्हें क्या पसंद है,
0: ये क्यों पूछ रहे हैं आप, शाकाहारी में ये सब कैसे आ गए?
1: देखो, एक तो शाकाहार दिवस है, समझो ना, थोड़ी सा जो हम हिंट दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं,
0: समझ तो गए हम भी कि कॉफी या चाय में से क्या पसंद है, तो हम अपना जो जवाब है वो बचा के रखेंगे उस समय के लिए जब हमारे श्रोता अपने जवाब दे देंगे।
1: बिल्कुल,
0: तब
1: आप लोग भी बताइए आपको क्या पसंद है, चाय की कॉफी,
0: फिर पता चलेगा कि आज सखी सहेली के बाद चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: या दोनों ही नहीं मिलेगा।
1: नहीं, कॉफी या चाय में से आप बताइए आपको क्या पसंद है, तो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा दिवस है ना।
0: और जो शाकाहारी दिवस आज है हम बता रहे हैं, तो दिन भी थोड़ा हरा भरा है, और शाकाहारी लोगों की मतलब बातें करें, शाकाहारी जिन्होंने खाते हैं, मतलब सभी खाते हैं, शाकाहारी तो सब होते हैं क्योंकि सभी एक ना एक
1: शाकाहार के साथ में
0: कुछ कुछ और दूसरे आहार भी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो शाकाहारियों की, इनकी थाली को देखकर, सब्जियां देखकर डॉक्टर भी बोल देते हैं कि भाई वाह, रंगों का पूरा पैलेट ही यहाँ पे भरा हुआ है। तो विश्व शाकाहारी दिवस में हम यही बात करते हैं कि शाकाहारी भोजन और पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संतुलित खान पान के बारे में सोचने का मौका ये दिन हमें देता है।
1: बिल्कुल, लेकिन आज हम कोई भारी भरकम सा आपको भाषण नहीं देने वाले हैं कि हाँ कि आपको ये करना चाहिए आपको करना चाहिए, आपको जिस कलर की, जिस रंग की सब्जी पसंद है आप खाइए, जो फल पसंद है वो खाइए। और देखिये, खाने के समय भाषण सुनना ऐसा ही लगता है जैसे कि गर्मा गर्म पकौड़े सामने रखे हों और कोई कहे पहले इसमें से आप कैलोरी गिननी कि आपको कितना इसमें से आपको आपके वजन बढ़ाने वाली चीजें हैं, इसमें ऐसी चीजें वैसी चीजें, तो उस समय तो हमें लगता है ना कि हम बस एंजॉय करें, उसको आनंद उठाएं उस पकौड़ों का, तो वैसे ही है शाकाहार दिवस के बारे में बात करेंगे। तो हम अपनी अपनी बात करिए, आप बताइए कि भाई आपको कौन सी सब्जी पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है आपको, मतलब कौन सी सब्जी को किस तरह से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं एक सब्जी को, तो ये बता सकते हैं आप। और साथ ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके जो प्लेट रहती है उसमें किसका राज रहता है, आलू का, गोभी का, टमाटर का, मिर्ची का, किस चीज का सबसे ज्यादा रहता है बोलवाला?
0: अभी तो लग रहा है आलू ही जीत जाएगा वैसे। लेकिन पनीर भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि पनीर कुछ घरों के लिए तो सब्जी नहीं है बल्कि परिवार का एक सदस्य जैसा होता है, कहते कि क्या बनेगा ते पनीर, कल क्या बना था पनीर, आज क्या बनेगा पनीर,
1: कोई आ रहा है तो भी पनीर, कोई नहीं आ रहा है तो भी पनीर,
0: और बहुत दिनों से खाया नहीं इसलिए भी पनीर। तो पर कुछ अलग अलग पनीर की भी बहुत सी रेसिपी होती है, तो अलग अलग बनाते हैं कि कभी क्या बनेंगे, तो शाही पनीर बनेगा, कभी कुछ पनीर का अलग अलग चीजें, कभी भुर्जी बन जाती है पनीर की, तो पनीर भी अपने आप को रंगों में अलग अलग रूपों में
1: हरा भरा भी पनीर हो जाता है जब हम उसमें कोई हरी सब्जी मिला के बना लेते हैं।
0: और सही बात ये भी है कि शाका

0: शाकाहारी भोजन बोलते साथ ऐसे जो कहते हैं ना घास फूस बोलते कई बार लोग, तो वो घास फूस नहीं, ऐसा नहीं कि सलाद की प्लेट लेकर बैठ गए तो ही शाकाहारी। भाई शाकाहारी व्यंजनों की जो बातें हैं वो तो अपने आप में ही है, क्योंकि इतनी सारी विविधता है हमारे रसोई में, हम जब देखते हैं शाकाहारी खाने की तो ऐसा लगता है कि खाना खा लें कि इसकी फोटो खींच लेंगे, इतना कलर रहता है, इतना रंग रहता है, तो बड़ा आनंद भी आता है।
1: बिल्कुल। और दाल चावल रोटी सब्जियां फल अनाज दही दूध पनीर मेवे कई तरीके के जो पौधे होते हैं वो उनपे जो आधारित फल होते हैं फ्रूट होते हैं और ये सब्जियां होती हैं शाकाहार होता है। तो अगर संतुलित भोजन हो तो शाकाहारी थाली जो होती है वो स्वाद और पोषण दोनों से भरी हुई हो सकती है। और शाकाहारी भोजन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है कि एक ही चीज अब मत खाते रहिए कि हमने पनीर खाना तो पनीर चला ही चला जा रहा है बाकी चीजों को भी मौका दीजिए अपनी स्वाद को पहचानने का। तो दालें हैं और प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं और बहुत से आवश्यकता अनुसार कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं, तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
0: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोले अरे यार हरी सब्जी क्यों खानी है, लेकिन अगर उसको स्वादिष्ट तरीके से हम पकाते हैं तो उसका एक अलग तरह का जायका बढ़ जाता है। और ऐसा लगता है जिसको देख के कल को ऐसे लगता था कि नाक सिकोड़ते थे कि ये नहीं खाना है, वो हमारी पसंदीदा डिश बन जाती है कि ये नहीं बना, चाहे वो लौकी ही क्यों ना हो, क्योंकि लौकी बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन लोग उसे खाना नहीं चाहते, उनके कहते हैं कि लौकी कद्दू क्या खाना है।
1: बिल्कुल लौकी को ही नेहा अगर हम दाल में चने की दाल में डाल के बनाए क्या स्वाद बनती है वो।
0: हाँ, तो वही तो बात है कि अगर जब हम उसको बनाने का तरीका अगर बदल देते हैं तो ये सब्जियां भी बोल सकती है कि भाई मैं जब पहले खाने की मेज पे आती थी तो कैसी शिकायतें होती थी, अब देखो अब मुझे देख के मुंह मत बनाओ, मुझे देख के थोड़ा मौका तो दो। अलग अलग तरह से अब लौकी का अगर रायता बनाया जाए तो कोई मुंह ना,
1: लौकी का कोफ्ता, वाह क्या बात।
0: देखिए लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका है।
1: कहने की मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते वो किस तरीके से कितने कितने तरीके से बन सकती है।
0: तो इस तरह से बन सकती है, व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की, जब ज्यादा बातें हो जाती है ना तो हमें एक गीत चला लेना चाहिए,
1: क्योंकि थोड़ा हटे वहां से
0: दिमाग और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया जाए।
1: बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा लगेगा।

0: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: तो आरती जी, 3 तारीख का जो जश्न है वो तो बड़े जोर शोर से होने वाला है, और हमारे सभी जो श्रोता हैं वो भी फेसबुक पेज के जरिए लाइव सुनेंगे, शायद
2: सबको इंतजार होगा,
1: लाइव सुनने तो मिलेगा ही उन्हें।
2: बिल्कुल, और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ जो कि है कहानी पद्मश्री की। तो आज हम लेकर आए हैं जिनकी कहानी, वो है लक्ष्मी बरुआ जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और कभी कभी समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद की नहीं बस एक बड़े सपने की जरूरत होती है, और एक ऐसा सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए देखा जाए जिनकी आवाज उठाने के लिए उनके साहस की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी प्रेरणादायक महिला है क्योंकि इन्होंने बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और कर्ज लेने की जगह नहीं माना बल्कि उसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम भी बनाया। जैसा कि आपने नाम कहा, लक्ष्मी बरुआ हैं ये, और असम की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महिला है। उनका जीवन विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
2: बिल्कुल, और लक्ष्मी बरुआ का जन्म हुआ आसाम के जोरहाट जिले में हुआ था उनका जन्म, और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उनका हौसला जो था वो बना रहा।
1: 1973 में प्रभात बरुआ से इनका विवाह हुआ और उसके बाद इनकी जिंदगी ने नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी के लिए वो सुलझे हुए जीवन साथी और मेंटोर दोनों साबित हुए क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया बल्कि 1980 में जब वो जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया।
2: बहुत बड़ी बात है ये उस समय के लिए खास तौर पर। और विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए काम करने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। ग्रामीण विकास, व्यस्क शिक्षा, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता और वंचित लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था कि आर्थिक निर्भरता जो होती है वो महिलाओं के लिए जो उनका जीवन होता है उसको कितना सीमित कर देती है।
1: जी, तो लक्ष्मी बरुआ ने बैंक में काम करते हुए एक ऐसी समस्या को महसूस किया जो आज हमें तो छोटी लग सकती है लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। जैसे कि गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो बैंक तक आती थीं, लेकिन बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार मदद ही नहीं मिल पाती थी।
2: बिल्कुल, और यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि अगर बैंक की व्यवस्था इन महिलाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकती तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो महिलाओं की जरूरतों को समझे। और 1983 में उन्होंने जोरहाट के दक्षिण में महिला समिति की शुरुआत की
1: और महिलाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास भी सुरक्षित बचत और वित्तीय जानकारी के पर्याप्त साधन नहीं थे। महिलाओं के लिए बैंक खोलने का विचार उनके मन में 1990 के आसपास आकार लेने लगा था।
2: बिल्कुल, लेकिन सपना देखना तो आसान था इतनी बड़ी बात को, लेकिन उसे सच करना उतना आसान भी नहीं था। लक्ष्मी बरुआ को कई कठिनाइयों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किए और उसके बाद उनका सपना वास्तविकता की दिशा में बढ़ सका और अंततः 1998 में जोरहाट में कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई।
1: और इस संस्था का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवा देना नहीं था, इसका उद्देश्य था महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, उन्हें वित्तीय जानकारी देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना।

0: और ये बैंक अपने स्वरूप में बहुत ही खास था।
1: ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था और इसके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक ने कम आय वाले लोगों और महिलाओं तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। छोटी बचत से लेकर ऋण और वित्तीय जागरूकता तक इस पहल ने बैंकिंग को उन महिलाओं के करीब लाने का प्रयास किया जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थी।
0: और एक छोटा सा विचार है आरती जी, और ये छोटे से विचार ने ही धीरे धीरे हजारों खातों और अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया। लक्ष्मी बरुआ की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि महिला को सिर्फ सहायता देना नहीं है बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना होगा।
1: यही सबसे बड़ी बात है कि हाँ। अवसर देना चाहिए उनको, और क्योंकि जब किसी महिला के पास अपनी कमाई होती है, बचत होती है, बैंक खाता होता है और आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास होता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
0: हाँ, और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है इसका असर, घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी बरुआ की कहानी केवल बैंक की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है।
1: बिल्कुल, उनके सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिला। 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े सम्मान के माध्यम से कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य को भी राष्ट्रीय पहचान मिली और लक्ष्मी बरुआ को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर आया वर्ष 2021 जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
0: और ये सम्मान उनके लिए ही नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना जिनके लिए उन्होंने वर्षों तक काम किया। लक्ष्मी बरुआ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा बदलाव वही है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। तो जब महिलाएं काम करती हैं, कहते हैं ना वो जिस तरह की बात है कि महिला अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज शिक्षित होता है, उसी तरह से जब एक महिला ये सोचती है कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है या समाज के लिए कुछ करना है तो बदलाव जरूर आता है।
1: बिल्कुल, और एक बदलाव हम लेके आते हैं कि एक गीत संगीत में से कोई गीत सुन लेते हैं।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: तो आरती जी, हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथियों ने लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जियां उनके घर में बनती हैं।
5: अच्छा,
4: तो हमारे एक साथी कह रहे हैं हम तो सब्जी आजकल गोभी की ज्यादा खाया करते हैं। कल आलू की सब्जी खाई थी, आलू भी स्वादिष्ट थे। आगरे के थे वो मीठे होते, पंजाब का आलू स्वादिष्ट नहीं होता है। हमें अच्छा। तो आलू एक जैसा ही लगता है सारा।
5: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि सही कहा आपने, आलू ही जीतेगा, सबसे ज्यादा आलू पसंद है हमारे घर में सबको। पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पनीर तो सभी को पसंद होता है। चलिए आपको पसंद नहीं,
4: नहीं सभी
5: तो
4: को आप पसंद आलू खा सकते हैं। सभी को आलू भी पसंद नहीं होता, सभी को कुछ भी चीज़ें,
5: क्योंकि आलू में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, कहते ना उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
4: हमारे एक साथी कह रहे कल ही हमने हमारे घर पनीर बनाया था। छोटी वाली बहन ने बकायदा प्यार से दही मटर छोले और आलू मिक्स कर करके बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि आज तो वो उपवास है। फिर क्या हुआ, हो जाएगी।
5: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि प्लेन रोटी के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, जैसे कि तुमने बताया था नेहा।
4: हाँ।
5: क्योंकि उसमें मसाले कम जाते हैं और पनीर का रियल टेस्ट मिलता है। ये तो सही बात है, मसाले कम डालो तो उसका जो स्वाद है ना वो निखर के आता है।
4: बिल्कुल। और पनीर की बात भी एकदम निराली है, क्योंकि एक जैसा सफेदी लिए पनीर होता है ना, उसको इतना ज्यादा मसाले में डालने में ऐसा लगता है कि कुछ तो बेचारे को हम बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना। हमारे एक साथी जो अलग अलग बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए सब्जी की जो बातें उन्होंने लिखी, आलू सबके साथ चल जाता है,
5: सबके साथ।
4: तो आलू हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना चाहिए कि हम सबके साथ
5: जाए
4: और अकेले भी हमें खाया जा सके। खाया तो नहीं जा सके, बट अकेले भी हम चल सके अपने जीवन में और सबके साथ मिलकर भी चल सके। लेकिन पनीर को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना। खाली पनीर भी खाया जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे सेक के खाते हैं, भले चाट मसाला डाल के खाते हैं, लेकिन तो पनीर उसका जो टेस्ट बढ़ जाता है
5: वो तो है नहीं है। लेकिन पनीर को बैगन के साथ नहीं खा सकते ना। हाँ। आलू को आप बैगन के साथ भी खा सकते
4: आलू को किसी हैं। आलू को पनीर के साथ भी खा सकते हैं।
5: बिल्कुल। आलू को पनीर के साथ और खा सकते हैं, और साथ ही जो बैगन के साथ में आलू खा सकते हो। ऐसी सब्जियां जिनके साथ में पनीर नहीं खा सकते उनके साथ भी आलू चल सकते हैं, यानी कि आलू जीतता है।
4: तो आलू को हम जिताएं, उससे पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
1: सखी सहेली,
0: सिर्फ हम आलू गोभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगीत की।
1: हाँ बिल्कुल, आलू गोभी की हमने बात

0: कर ली है।
1: जी.
0: अब हम संगीत पे आते हैं। तो संगीत कुछ सुरों का मेल भर नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हम गीत सुनाते हैं, जब कहते हैं ना कि हमने कार्यक्रम के बारे में बता दिया, सब विषय बता दिए, अब पहले गीत, यानी कि शुरुआत हम जब कार्यक्रम की संगीत से करते हैं ना, तो पूरा जो कार्यक्रम है वो संगीतमय हो जाता है ना, एक रिदम में आ जाता है।
1: हाँ, और जब हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं तो बीच में एक संगीत आता है, तो एक अलग सी अनुभूति भी होती है, भाव अलग हो जाते हैं।
0: और कभी कोई धुन हमें हंसा देती है, तो कभी वही धुन अनकहे आंसू भी ले आती है।
1: और कभी ऐसा भी महसूस किया होगा हमारे श्रोताओं ने कि कोई पुराना गीत अचानक जब सुनाई देता है तो हम बरसों पीछे लौट जाते हैं। वही कमरा, वही मौसम, वही चेहरे और वही अधूरी सी कहानी। संगीत के पास यादों को सहेज कर रखने की एक अनोखी शक्ति होती है। और एक धुन जिसे हमने शायद वर्षों से नहीं सुना है, लेकिन पल भर में अगर हमने उसे सुना तो पल भर में बीते हुए समय का पूरा दरवाजा खोल देती है।
0: कभी कभी लगता है ना, जब कोई पुराना गीत सुन रहे होते ना, तो एकदम से खो जाते हैं उसी में, उस पूरा दृश्य हमारे सामने आने लगता है। तो संगीत खुशी में हमारा साथी है और उदासी में हमारा हमराज। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारा मन थका हुआ होता है, कोई मधुर राग भीतर जैसे धीमी सी रोशनी जला देता है। जब दिल किसी बात से भारी होता है, संगीत उस दर्द को शब्द दिए बिना समझ लेता है। और शायद इसीलिए कई बार हम किसी से अपनी परेशानी नहीं कह पाते, लेकिन एक गीत सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा था। बिल्कुल।
1: हाँ, तो वो गीत सारी बातें हम तक साझा कर देते हैं। संगीत की खूबसूरती भी तो यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय राग हो, लोकगीत हो, भजन हो, या कोई सादा सी कोई धुन हो, हर सुर अपनी तरह से मन को छूता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी एक ही संगीत पर मुस्कुरा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और बचपन में माँ की लोरी से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक संगीत हमारे साथ चलता है। त्योहारों में भी गीत है, प्रार्थनाओं में स्वर है, प्रेम में धुन है, और विदाई में भी संगीत की एक धीमी सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे जीवन की कहानी शब्दों से नहीं, सुरों से भी लिखी जाती हो।
1: हाँ, और शायद संगीत का सबसे बड़ा जादू भी तो यही है ना आरती जी, कि हमें हमारे भीतर से मिला देता है। कुछ देर के लिए अगर दुनिया की भागदौड़ जो होती है वो रुक जाती है, आंखें बंद करते हैं और हम अपने ही मन की आवाज सुनने लगते हैं संगीत में डूबकर।
0: और इसीलिए जब कभी मन उदास हो, कोई प्यारी सी धुन को आप सुन सकते हैं। हो सकता है समस्या वही रहे, लेकिन उसे देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाए, क्योंकि संगीत हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलता, कभी कभी वो हमें इतना बदल देता है कि वही परिस्थितियां हमें थोड़ी आसान लगने लगती हैं।
1: और संगीत सुनाई सिर्फ नहीं देता है, बल्कि महसूस होता है, याद बनता है और कभी कभी जीवन भर हमारे भीतर गूंजता रहता है। और यही कारण है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद और यूनेस्को समाज में संगीत कला को बढ़ावा देने और शांति और भाईचारे के आदर्शों को स्थापित करने के लिए 1 अक्टूबर का दिन संगीत जागरूकता दिवस के रूप में मनाए जाने के रूप में हमें मान्यता मिली है। संगीत को हम इस दिन मनाते हैं, या कहें कि जागरूक किस तरह से हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी कई बार संगीत की जो पद्धतियां हैं इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे हम अलग अलग अलग अलग रागों से संबंधित अगर आप बातें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से राग को पढ़कर अलग अलग भावों से आप निजात पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं।
0: बिल्कुल। और कई कई अब तो अस्पतालों में भी एक संगीत थेरेपी भी दी जाती है लोगों को, मरीजों को, जैसे कि वो अपने अंदर से खुश हो सके, उनके अंदर एक उम्मीद जाग सके। तो ये जागरूकता दिवस है। और हमारे जो साथी हैं क्या क्या लिख रहे हैं, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत तो मेरी रूह है, जान है, जिंदगी है, जब से होश संभाला है तब से संगीत और गीत सुनती आई हूं, और विविध भारती मेरे रेडियो ट्रांजिस्टर और अब फोन में बजता ही रहता है, मेरे किचन, बाथरूम और आराम करते समय, सोते समय भी बजता है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आ गई हूं, पर मुझे शुरू से ही पुराने फिल्मी गीत संगीत बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा कि केएल सहगल, पंकज मलिक, सीएच आत्मा और हेमंत कुमार, लता रफी, गीता दत्त बहुत पसंद है, आजकल के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गीत हैं जो उनको आज के भी अच्छे लगते हैं।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथी कह रही है संगीत का जादू ऐसा जो सिर चढ़कर बोलता है, विविध भारती इसमें मेरी सबसे प्रिय और सहयोगी रही है उन्हें। और एक और साथी कहते हैं कि संगीत का जादू तो मेरे सिर चढ़कर बोलता है, ऐसा मेरे घर के लोगों का कहना है। सच भी यही है, मैं खुश रहती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है। हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है, बल्कि जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
0: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में घुला है संगीत, झूमते वृक्षों में, बहते दरिया में है संगीत, भंवरे की गुंजन में है संगीत, मंदिर की बजती घंटियों में है संगीत, गौरी की बजती पायल खनकती चूड़ियों में है संगीत, आसमां से बूंदों में है संगीत, पक्षियों के मधुर कलरव में है संगीत। सच में रूह का सुकून है ये संगीत।
1: वाह, क्या बात हमारे साथियों ने कही है। तो इन संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है, पर क्यों ना इस वक्त एक संगीत
0: एक बिल्कुल गीत तो सुनना ही चाहिए।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।

0: और मन झूमने लगता है आरती जी जब संगीत की बात हो। हमारे एक साथी लिखते हैं कि संगीत एक ऐसी अलौकिक कला है जो बिना किसी भाषा और सीमा के सीधे दिल से जुड़ती है। ये सिर्फ सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जब भी अपने अपने बता रही अपना एक्सपीरियंस कि जब भी मेरे पतिदेव से जब मैं नाराज होती हूँ या गुस्सा होती हूँ तो वो मुझे गीत गाकर मनाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम से खिलखिला उठती हूँ, भाई क्या बात
0: अरे
1: है
0: वाह। और
1: गीत
0: हमारे एक साथी कह रहे कि संगीत एक ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देता है। इसकी मधुर धुनें कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं तो कभी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर देती है। संगीत में मन को सुकून देने, थकान मिटाने और उदास दिल को संभालने की अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है तो कोई गीत किसी अपने की याद दिला देता है। सुर, ताल और शब्द जब मिलते हैं तो भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया बन जाती है। शायद इसलिए संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यही संगीत का असली जादू है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता
1: क्या
0: है।
1: बात है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि मैं तो लोक गीतों की भी बहुत शौकीन हूँ और प्रादेशिक हो या किसी भी भाषा को उनको लोकगीत बहुत पसंद है। तो गीत वो तो कोई भी हो सकता है, लोकगीत हो या किसी भी भाषा का हो, संगीत तो संगीत है फिर। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शब्द खामोश हो जाते हैं वहां संगीत दिल की भाषा बनकर बोलता है।
0: तो हमारे कई साथियों ने से एक ही तरह की बातें लिखी क्योंकि संगीत से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से हम सबकी एक ही है। हमारे कह रहे हैं कि सुर ना सजे का गाँव में एक साथी ने लिखा है, सुर के बिना जीवन सूना। संगीत का जादू वो अदृश्य शक्ति और प्रभाव है जो बिना किसी भाषा की सीमा के सीधे मन और आत्मा को छू लेता है। ये भावनाओं को जगाने, थकान मिटाने और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। संगीत हमारी गहन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें कई बार साधारण शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। तनाव भरी भागदौड़ के बीच संगीत सुनने से मन को असीम शांति और ताजगी मिलती है। पुराना संगीत सुनते ही इंसान पल भर में अपनी पुरानी यादों और बीते हुए पलों में पहुंच जाता है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर संस्कृति और देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यहाँ आरती जी एक बात कहना जरूरी है कि भाई संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, पर ऐसा नहीं हो कि हम जब सड़क पे जा रहे हैं तो संगीत कानों में हमने लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और हमने सोचा कि चलो सुनते सुनते ही जाएंगे आज हम, और उस वक्त संगीत आपको अगर कहीं किसी दूसरी दुनिया में या किसी दूसरी यादों में आपको खोने के लिए मजबूर कर देगा तो सड़क
1: नहीं
0: पर
1: नहीं वो
0: आपका
1: अच्छा
0: चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी, ये भी कोई भी चीज सावधानी के साथ अगर करी जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो सड़क पे चल रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप संगीत को थोड़ा देर के रोक दें, तो वो आप जब कहीं बैठे हैं या कहीं आप आराम से अपने घर में या
0: हाँ
1: इस तरह से कभी हैं तो आप वो तब सुनिए कहीं। लेकिन बाहर जाते समय या रेलवे स्टेशन पे, कई लोग ट्रैक पे जब चलते हैं है ना, ट्रेन की वो पार कर रहे होते हैं रेल लाइन के, तो वहां पे भी आप ये सब मत लगाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है इस
0: हाँ
1: तरीके की
0: और अगर
1: चीजें।
0: आप सार्वजनिक स्थान पर हैं और सफर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने एकदम जोर से जो लगा देते हैं ना संगीत की भजन, आप भजन भी सुन रहे हो, चाहे कोई बहुत ही अच्छा संगीत भी आप सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी और को भी वो संगीत पसंद आ रहा हो। और
1: बिल्कुल।
0: तेज आवाज में जब संगीत चलाया जाता है तो कभी कभी जो उसकी जो खूबसूरती है वो खो जाती है, तो वो
1: बिल्कुल।
0: भी आपको उससे भी बचना चाहिए।
1: और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को भी हो सकता है, किसी को खराब या किसी को परेशानी हो रही हो, कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो सकती है,
0: जी
1: तो संगीत को उतना ही सुनिए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो, उस
0: तो
1: हिसाब से आप
0: संगीत को
1: सुनिए।
0: जो मधुरता उसकी है उसकी
1: बिल्कुल।
0: मधुरता बनी रहे, बस इसका ध्यान रखना
1: इसकी वजह से
0: चाहिए।
1: लड़ाई झगड़े ना हो। और दूसरी चीज है कि आप, क्योंकि आप बाहर लगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप तेज आवाज में सुन रहे हैं तो हो सकता है दुर्घटना का कारण बन जाए, कोई सामने वाले को किसी को परेशानी हो जाए,
0: जी
1: तो आप चीजों को ध्यान में रखते हुए आप संगीत को सुनिए। और एक
0: बिल्कुल
1: हमारे साथी हैं जो लिख रहे हैं कि संगीत केवल सात सुरों का संगम नहीं है बल्कि आत्मा की भाषा है जो बिना किसी शब्दों के सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने भी।
0: बिल्कुल। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं बिल्कुल मिल रही हैं आपस में, क्योंकि एक तरह से संगीत के लिए अगर कहा जाए तो कुछ यही बातें हम कह सकते हैं जैसे भावनाएं हमारे साथियों ने भेजी हैं। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर, मतलब हम दोनों का कहने का ये अर्थ है कि हम सब मिलकर
1: हाँ
0: एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, गीत सुनते हैं संगीत के समय।

0: तो आरती जी ये बातें तो हो गई, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो तो हमने की ही नहीं।
1: कौन सी जरूरी बात नहीं की हमने?
0: इतने सस्पेंस आपने ले आया, लेकिन वृद्धजनों की देखभाल के उपयोगी टिप्स जो हमें देने थे और हमारे साथियों ने ढेर सारे कमेंट्स के जरिए
1: उसी पे आ रहे हैं हम लोग, उसी पे तो आ रहे हैं अब। और क्योंकि हमारे साथियों ने कितना सारा तो लिख के भेजा है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, तो हम ले लेते हैं अपने साथी का पहला कमेंट जो लिखते हैं कि सभी को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वैसे देखा जाए तो इन्हें स्वस्थ और हर हाल में खुश रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, पर आजकल के जो युवा वयस्क हैं वे तो समझदार हैं पर इन्हें शायद और जागरूक होने की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान और हर तरह से उनका ख्याल रखने की जरूरत है। एक तरह से नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, उनके पास बहुत सारे अनुभव तो होते ही हैं।
0: और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घरों में कहा जाता है बुजुर्ग हमारे दरवाजे की शोभा होते हैं, तो उन्हें अपनी शोभा बनाएं, घर के कोने में पड़े हुए शोपीस नहीं बनाएं। और एक और साथी कह रहे हैं कि आज का दिन बुजुर्गों की देखभाल और उनकी देखभाल की जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो उन्होंने इसकी हमें बधाई दी है।
1: अच्छा, और साथ ही हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि मेरे मम्मी जो 83 वर्ष की आयु की हैं वे मेरे साथ रहती हैं और वो वॉकर से चलती हैं और उनको मतलब खाने में परेशानी होती है क्योंकि उनके दांत भी नहीं है। तो लिखते हैं कि मेरी वाइफ उनको सब खाना क्रश करके मतलब पीस के देती हैं, उनको ब्रश स्नान जैसे सारे कामों में हेल्प करते हैं वो और दवाई वगैरह सब अच्छे से देते हैं। ये सब चीज़ें लिखी है कि पूरी चीज़ें सब काम करते हैं उनका। उनके पास सादा कीपैड का फ़ोन है, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो मैंने अखबार लेना और टीवी से केबल और मतलब उनको कनेक्शन चालू करवा दिया ताकि उनका टाइम पास हो और दुनियादारी से वो अपडेट रहें। तो उनसे वो बात करते हैं जब शाम को अपने जॉब से आते हैं, तो वो बात भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने साथ में अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, खाना पीना, यही चीजें हैं बस देखभाल के लिए, और कुछ आपको नहीं करना होता है कुछ ऐसा।
0: हमारे साथी वही कह रहे हैं कि बुजुर्ग होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि ये जीवन का एक सम्मानित और सुंदर पड़ाव है जिसपे अनुभव की परिपक्वता और गरिमा होती है। बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। वे हमारे समाज की अनमोल धरोहर है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से परिवार और समाज को सींचा है। हर उम्र की एक गरिमा होती है जिसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करके खुशी से अपना कर जीना चाहिए।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि वृद्धजनों की देखभाल की बात मैं क्या करूं जब मैं खुद 75 पार कर चुका हूं और घर में तो सभी दादा कहते ही हैं। अब विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़े हमारे सभी साथी भी दादा कहकर पुकारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के सदस्य सभी मेरी अच्छी देखभाल रखते ही हैं, बाकी मैं खुद अपनी देखभाल रखता हूं। रोज सुबह विविध भारती जागो सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूं, शाम को इवनिंग वॉकिंग करने जाता हूं और रात ढलती जाए रात सुनते हुए शुभ रात्रि हो जाती है। अब मैं सखी सहेली शुरू होने से पहले एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ। तो अपनी झपकी से उन्होंने देखिए झपकी भी अपनी तोड़ी है।

0: और हमारे लिए लिखा भी उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपका। और हमारे साथी ने लिखा है कि वृद्धजनों की देखभाल, उनके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और भावनात्मक जुड़ाव का ध्यान रखकर पूरी गरिमा और स्नेह के साथ करनी चाहिए। बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए मुख्य बिंदु उन्होंने बताया कि रक्तचाप, मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां अगर हों तो समय समय पर जांच कराएं, डॉक्टर जो निर्देश दें उसके अनुसार उन्हें दवाई दें, भोजन में प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें, पानी की कमी से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहें और इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्हें अकेला न रहने दें। कुछ कमियों के बावजूद परिवार में एक सहारे के साथ बहुत खुश रहते हैं हमारे जो वृद्धजन होते हैं, तो उन्हें बहुत लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि प्यार और देखभाल सम्मान की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, वो सम्मान आप प्यार देते हैं तो बस वो देखभाल हो गई, इससे ज्यादा बड़ी देखभाल तो और क्या होगी जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा गीत सुन लें।

0: शुक्रिया।
1: तो बहुत शुक्रिया हम किस लिए कह सकते हैं कि हमारे साथी चाय को पसंद करे, कॉफी को नहीं।
2: वैसे आज कॉफी दिवस है लेकिन हाँ। चाय ने बाजी मार ली है।
1: कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत गया। आप आपकी चाय जीत गई तो कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत
2: आलू भी जीता है।
1: और हमारे एक साथी लिख रहे कि चाय मुझे बहुत पसंद है, सुबह ब्लैक कॉफी पीता हूँ। देखो अच्छा। कॉफी पी रहे हैं वो और कह रहे नाश्ते के बाद दूध वाली चाय। इतनी चाय की बात हो रही है, अभी कोई आया तो चाय तो मुझे बनाना ही है, कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ खासकर शाम को, तो रात को मेरी नींद गायब हो जाती है। मतलब मिली जुली सरकार चल रही है, इन्हें कॉफी और चाय दोनों पसंद आ रही
2: है। तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, आइस टी भी पसंद है इनको। और ये जो भी चीजें बनती हैं घर में खा लेते हैं, इन्होंने बोला ये टिंडे भी खा लेते हैं। इन्होंने सब्जियों के बारे में बताया कि ये सब्जियां भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं, तो भरवा टिंडे, भरवा शिमला में चौ, सच बोलूं तो करेले की सब्जी भी फेवरेट है। क्या बात है सच में,
1: कुछ हमारी टीम के लग रहे हैं। और हमारे एक साथी ने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है, जब भी कभी यार दोस्त मिलते हैं तो चाय की चुस्की तो होती है, बैठे बैठे गप्पे हो जाती है।

0: और इस बीच कुछ खाने को हो जाए तो कचौड़ी या दाल मंगोड़े की बात ही क्या, मतलब प्रोग्राम के बीच में अगर खाने की बातें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें जाके चाय पकौड़ी कुछ खाना चाहिए. अब हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि घड़ी भी आज हमारा साथ दे रही है, तो घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि हम जाएं चाय पकौड़े खाएं, कॉफी भी पी सकते हैं.
1: आज तो कॉफी पियेंगे क्योंकि आज कॉफी दिवस है, तो कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी हमें.
0: तो ये भी बताते चले कि कॉफी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 2015 में पहली बार मिलान में इटली में इसे मनाना शुरू किया था उन्होंने. और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लाखों किसानों और श्रमिकों का समर्थन करना था जिनकी आजीविका इस फसल पर निर्भर करती है. और फिलहाल ये निर्भर करता है कि समय तो कह रहा है कि बिल्कुल अब आप अलविदा कह दें, तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार.

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सबसे पहले तो ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 0222867 0288, यानी 02228607 0288। दूसरा टेलीफोन नंबर है 0224002466 2, यानी 02240024662। ये दोनों बड़े काम के नंबर हैं, क्योंकि इन्हें जब आप सोमवार को दिन में 11 बजे डायल करते हैं तो हम विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से कहते हैं हेलो फरमाइश, और फिर आपसे करते हैं बातें और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो शुरू करते हैं आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सिलसिला ये बताते हुए कि रिकॉर्डिंग सोमवार को होती है दिन में 11 बजे से। आज का पहला कॉल ये रहा। हेलो फरमाइश
1: जी। यूनुस जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, रामनगर गुना मध्य प्रदेश से।
0: नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों में आपको अच्छे लगे हैं?
1: इन दिनों में अच्छे लगे हैं सबसे पहले तो यही है हेलो फरमाइश, और आपने फिर से शुरू किया है सखी सहेली का जो हेलो सहेली कार्यक्रम, वो भी लाजवाब है, पसंद आ रहा है। और जो पत्रों

0: पर आधारित मन चाहे गीत फिर से शुरू हुआ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम तो विविध भारती में बहुत सारे हैं और ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है विविध भारती।
1: विविध भारती अब अपनी यात्रा के 69 बरस पूरे करते हुए 70वें बरस में प्रवेश कर रही है 3 अक्टूबर को, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बस यही कहना चाहता हूँ कि विविध भारती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और विविध भारती से सीखकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं वो मनोरंजन तो उनमें होता ही है लेकिन ज्ञान से भरपूर होते हैं।
1: जी बहुत शुक्रिया। बताएं गुना शहर की क्या स्थिति है, बारिश वारिश खत्म हुई है?
0: इस बार बारिश तो कम हुई है सर, लेकिन हाँ फसल तो अब पककर तैयार हो गई है और कट रही है, कहीं कहीं कटने को भी तैयार है। और मक्का की फसल ज्यादातर होती है, पहले सोयाबीन की फसल होती थी लेकिन क्या है कि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो फिर किसान भाई मक्का की फसल लगा रहे।
1: अच्छा, अब बताइए आप कौन सी फरमाइश लेकर आज हाजिर हैं?
0: जी फरमाइश है मुकेश और लता जी की आवाज में शोर फिल्म का गाना है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है।
1: जिंदगी का दर्शन छिपा हुआ है इस गाने में, संतोष आनंद के बोल हैं ये। चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: मुझे बताएं कि ये जो गंगा शहर है ये कहाँ है और ये गंगानगर से कितना अलग है?
1: ये गंगानगर तो अलग जिला है सर।
0: अच्छा,
1: और अपना जो गंगा शहर है ना, ये बीकानेर का ही उपनगर है, बीकानेर का ही एरिया है गंगा शहर।
0: अच्छा, क्या बात है। और बीकानेर तो भाई बहुत ही अलबेला शहर है।
1: बिल्कुल सर, हमारे शहर के खाने पीने की चीजें बहुत फेमस हैं।
0: बिल्कुल बाकायदा, और वहाँ की अपनी एक संस्कृति है।
1: बिल्कुल है, पुराना शहर है सर
0: जी।
1: पकौड़ी, खाने पीने की सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा फेमस है सर हमारे यहाँ की, नमकीन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी इतनी सारी बीकानेर की बातें हो रही थी तो एक कोई लोकगीत नहीं सुनाएंगे तो फिर ये कॉल तो सुना सुना हो जाएगा।
1: जी सर, मेरी आवाज तो वैसे खास नहीं है,
0: फिर भी कोशिश कर लीजिए।
1: बन्ना रे भागा में झूला गालिया।
0: अच्छा बहुत ही मशहूर है ये ना। हाँ बिल्कुल
1: जी, राजस्थानी सॉन्ग बहुत फेमस है सर यहाँ के।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा, और वहाँ के कई गायक जो हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं।
1: बिल्कुल हुए हैं सर।
0: आप मुझे बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप?
1: तोबा कैसे है नादान घुंगरू पायल के।
0: ओहो क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश की है आपने। तो चलिए बातों का सिलसिला खत्म करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना बीकानेर में।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार यूनुस जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह उत्तम जी, उत्तम हुआ कि आपका कॉल लग गया।
1: जी सर, और पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है सर।
0: जी जी जी

0: हेलो फरमाइश
1: जी, हम नारायण कुमार पटेल बजहा धमकरिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: अच्छा क्या बात है, बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना हमको जो है हीर राँझा का ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं।
0: इतना ज्यादा निराश क्यों हो रहे हैं भाई, ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, आवाज भी थकी हुई।

0: मुझे अच्छा लगता है मोहम्मद रफी का गाना सुनने में अच्छा लगता है, निराश नहीं हो रहे हैं।
1: अरे भैया हम तो घबरा गए थे कि आप इतना आराम से थके हुए बोल रहे हैं, ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, हम तो अभी आपको समझाने वाले थे।
0: नहीं नहीं सर, समझाने वाले नहीं थे, इधर थोड़ा हम अपना गांव तरफ में भी खाली थे,
1: अच्छा
0: और वो आप लगाने लगे तो इस टाइम आप ही से बात हो रही थी, हमने सोचा कि फोन लगाएं आपसे, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बात करने के लिए। हम 1995 से रेडियो सुन रहे हैं, पहले रेडियो सुनते थे, मोबाइल ऐप पे सुनते हैं।
1: अच्छा ये बताइए खेत वेत सब जगह चलता है विविध भारती फिर?
0: हाँ सर एकदम क्लियर, चाहे जहाँ जाओ। इस समय हम धान के खेत में टहल रहे हैं, धान फूट गया है,
1: अच्छा
0: आंधी तूफान आया जिससे कुछ धान गिर गए हैं,
1: हाँ
0: जो नुकसान हो गया है
1: जी जी समझ रहे हैं,
0: थोड़ा
1: मौसम
0: बहुत।
1: खराब हो गया ना अचानक इसलिए।
0: हाँ
1: अच्छा हमें बताएं
0: हमारा।
1: विविध भारती
0: हाँ
1: इतने
0: जी
1: ध्यान से इतने सालों से आप सुनते रहे, तो वक्त के साथ जो बदलाव आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
0: जी बहुत बढ़िया बदलाव आया, क्योंकि हम उस जमाना जानते हैं जब रेडियो शॉर्ट वेव पे आता था, कुछ आवाजें क्लियर नहीं आती थी, सतरा की आवाजें जो है धीमी हो जाती थी, तेज होती थी, फिर उसके बाद 2:30 बजे तक वो शॉर्ट वेव पे ये प्रसारण बंद रहता था, FM
1: जी
0: पे चलता था हमारे यहाँ।
1: जी
0: फिर वो FM जो है दो बैंड के रेडियो होते थे, शॉर्ट वेव मीडियम वेव, उसमें एक प्लेट 100 रुपए एक तब लगती, तब 40 रुपए मजदूरी थी, तो 100 रुपए की प्लेट लगा दिया करते थे, तो वो स्विच रहता था, उसको स्विच ऑन कर दो एरियल लगा रहता था, ऊपर कर दो तो साफ क्लियर FM यहाँ हमारे यहाँ प्रयागराज 14.3 MHz पे सुनाई देता था। फिर उसके बाद एक बॉक्स आने लगा, उसमें स्पीकर और FM से बिजली बल, जो बिजली बचता था वो कोई गोमती में दुकान में कमरे में लगाए रखते थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी कमरे में लगाए, तो हम रेडियो सुनते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कक्षा 2 में थे तब से यानी सुन रहे हैं, जब से यानी हमको संभाला है हमने
1: अलग अलग तरह के
0: तब से।
1: कार्यक्रम हमारे आते हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको ज्यादा पसंद रहे हैं?
0: जी आज के फनकार हो गया, हेलो फरमाइश, उसके बाद जो है हमारे मेहमान, असेहतनामा हो गया है, एक सखी सहेली आता, अब तो मन चाहे गीत भी शुरू हो गया है जिसमें हम पत्र डाल भी चुके हैं।
1: अच्छा बढ़िया।
0: और हाँ जी, और एक आपका जिज्ञासा जो था वो तो एकदम समझो मजा ही
1: अच्छा
0: आ जाता है सुनकर।
1: अरे बहुत शुक्रिया। तो फिर अब हमको समझ में आ गया कि आप ठीक ठाक हैं, मतलब सिर्फ गाना ही था, ऐसा कोई मन की हालत ऐसी
0: हाँ जी
1: नहीं है?
0: गाना ही, नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, हम अपने आप में खुश रहते हैं,
1: हाँ
0: उसके
1: बस
0: बाद
1: ऐसे ही
0: रहते हैं।
1: जोश में रहना है ना, भले गाना अपन ये वाला सुन लेंगे। ठीक है सुनाते हैं
0: ठीक है
1: आपको, ये
0: सर।
1: दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन काम की तो है ना।
0: हाँ सर
1: सुनिए।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नाम विशाल यादव है और मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा विशाल जी, सब ठीक है?
1: हाँ बढ़िया सर।
0: और इंदौर की क्या हालचाल है?
1: इंदौर के बढ़िया, मौसम अभी खुशनुमा है और थोड़ी बारिश अभी बंद है।
0: अच्छा, हमने तो सुना था खूब बारिश हुई पिछले दिनों इंदौर में।
1: हाँ पिछले महीनों में हुई थी, पर अब नहीं हो रही है, अभी थोड़ी बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम है इधर।
0: अच्छा अच्छा, और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: सर मैं रेडीमेड के सिले का काम करता हूँ इंदौर में, और बढ़िया चल रहा है।
0: और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल सर, आपके तो खास करके।
0: अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है?
1: मेरी फेवरेट सिंगर लता जी है और आशा जी।
0: क्या बात है, तो उनके गानों की फरमाइशें आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम में करते रहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और लता जी का तो जन्म ही इंदौर में हुआ था भाई?
1: हाँ इंदौर में हुआ था, हम जानते हैं ना, उनके शराब से मतलब गाने सुनते रहते हैं, और जैसे कुछ उनके कार्यक्रम वगैरह भी आते हैं।
0: हाँ
1: वो भी सुनते हैं।
0: इंदौर का जो फूड कल्चर है वो तो बड़ा कमाल है, तो इन दिनों जो है वो कौन कौन से व्यंजनों का मजा लिया जा रहा है?
1: सर हमारे यहाँ तो सराबा फेमस है, तो अभी जैसे अभी मौसम के हिसाब से भुट्टे का केस वगैरह अच्छा चलता है।
0: और वो कचौड़ी?
1: बिल्कुल, यहाँ पे कचौड़ी और समोसे ये चीज तो फेमस ही है सर यहाँ पर।
0: बिल्कुल, जैसे इंदौर को याद करो तो अपना एक फूड कल्चर याद आता है ना।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ खाने पीने की बहुत फेमस चीजें हैं, यहाँ पर
0: कोई एंड नहीं है खाने पीने का।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो ये बारिश के मौसम में दाल बाफले के मजे लिए जा रहे हैं?
1: हाँ लिए जा रहे हैं सर, ये भी हमारे सराफे में बहुत फेमस है।
0: अच्छा, तो इंदौर वासी तो निकल पड़ते होंगे सराफे की तरफ जब मन चाहे।
1: हाँ बिल्कुल, रात को 4 बजे तक चालू रहता है सर ये।
0: बहुत सही।
1: ये गाना सुनना था सर मुझे।
0: कौन सा?
1: राजा और रंग की मूवी का, मेरा नाम है चमेली।
0: ओके,
1: आवाज में
0: क्या बात है। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं राजा और रंग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, मैं आरिफ खान मंसूरी बोल रहा था भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: आरिफ खान मंसूरी साहब, आपकी बहुत फरमाइशें आती हैं।
1: सर आपसे मेरी 15 साल पहले बात हुई थी सर।
0: अरे नहीं, यहाँ नहीं आती हैं, वो फेसबुक पे आती हैं, चिट्ठियों में आती हैं।
1: बाकी तो सब में आती हैं और मैंने आपसे बहुत साल पहले बात हुई थी।
0: अच्छा ऐसा है। हाँ सर, भोपाल के किस इलाके में हैं आप?
1: सर भोपाल के कोलार इलाके में सर हम।
0: अच्छा अच्छा, बताइए क्या हालचाल है आपके?
1: सर बढ़िया है, मैं टेलर हूँ
0: जी।
1: और ब्रज आरती से मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी।
1: और 2005 और 2010 के बीच में मैंने मुंबई में 150-200 फोन लगाए होंगे सर कम से कम।
0: अरे बाप रे, ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई।
1: और जितने भी आरजे थे उस टाइम के, कमल शर्मा जी हों, शहनाज जी हों, चाहे ममता जी हों, जितने भी आरजे थे सबसे मेरी बात हो चुकी थी।
0: और मेरे से?
1: और सर आपसे 2-3 बार आपसे बात हुई थी सर मेरी।
0: अच्छा
1: सर, क्या है कि मैं जैसे आपसे आज मेरी बात हो रही है तो मैं डायरी में नोट होकर रख लेता हूँ, तो मेरे पास वो 2005 से और 2010 तक मैंने फोन लगाए हैं, वो डायरी में मेरे पास सब नोट कर लिखा हुआ है सर।
0: अच्छा बहुत बढ़िया है। आप बताएं कि एक पुराना भोपाल हुआ करता था, एक पूरा कल्चर भोपाल का 30-40 साल पहले जिस तरह का था, क्या वो आज खो गया है?
1: सर अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है सर, पुराने भोपाल भी अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है, नए भोपाल भी जो बन गया है, और ये कोलार इलाका भी पहले भोपाल में नहीं आता था, अभी 5 साल से आ रहा है।
0: नहीं लेकिन जो तहजीब थी भोपाल की, जो पुराने घर,
1: सर तहजीब तो सर भोपाल की वही रहेगी क्योंकि जो बुजुर्गों सीखते हैं वो बच्चे करते हैं, अमल में लाते हैं।
0: बिल्कुल, एक पूरा शायरी का मिजाज और वो बात करने का अपना एक तरीका, भोपाल का पान।
1: जी सर, जी सर,
0: वो जलवे कायम है।
1: हाँ सर जलवे कायम है, वो पान की गुमटियाँ भी कायम है और नमक वाली चाय भी कायम है और वो बिल्कुल रौनक भी कायम है, मगर वो ज्यादातर पुराने भोपाल में पाई जाती है सर। वो
0: बिल्कुल, वो क्या कहते थे, तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया।
1: जी जी सर,
0: क्या बात है
1: सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है मेरे हम सफर और गाने के बोले किसी राह में किसी मोड़ पर ये चलना देना ये छोड़कर।
0: कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मुकेश की आवाज। आपके लिए ये गाना कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मेरे हम सफर।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार
0: नमस्कार
1: सर,
0: बोलिए।
1: मैं गांव लिहे दिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सवान बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, फोन कॉल नहीं लग रहा था, बहुत परेशान हो रहा था सर। अब जैसा शुरुआत हुआ था उसके बाद फोन ही नहीं लगा था मेरा।
0: बताइए, इतने दिनों बाद फोन लगाए, तो बताइए आपके इलाके की क्या हालचाल है भाई?
1: सर इलाके की हालचाल तो बहुत गर्मी है और बहुत धूप है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, पर खेत में फसल को पानी भर रहा है, कपास को।
0: जी, कुछ जगहों पर बहुत बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, क्या माजरा है ये?
1: हाँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ कि मतलब जगह जगह ये रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ना, तो कुछ जगह बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश क्यों नहीं हो रही सर?
0: हाँ, देखिए ना, मौसम किस तरह से बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना?
1: सही बात है सर, परेशान हो रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे खेत में सब मोटर से पानी चला रहे हैं और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है।
0: जी जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सर विविध भारती के कार्यक्रम मुझे सबसे ज्यादा हेलो फरमाइश और सखी सहेली, हेलो सहेली और जो पत्र आधारित के कार्यक्रम शुरू हुआ ना,
0: जी
1: तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा
0: सखी,
1: हमारा फेवरेट प्रोग्राम है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा सखी सहेली तो महिलाओं का कार्यक्रम है,
1: तो भी अच्छा लगता है सर सुनने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो गाने की फरमाइश?
1: गाने की फरमाइश सर, फिल्म का नाम है सरगम और गाने का बोल है पर्वत के उस पार।
0: चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते सर, यूनुस खान जी।
0: नमस्ते भैया।
1: मेरा नाम रामेश्वर रैकवार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: अरे क्या बात है, छतरपुर से बोल रहे, क्या हालचाल भैया?
1: बढ़िया है सर, अभी एक्सीडेंट हो गया था, 2 दिन वहाँ पड़े रहे बिस्तर में।
0: क्या हो गया, एक्सीडेंट कैसे हो गया?
1: सर बस टकरा गई थी उससे, बस और उसका हो गया ट्रक का।
0: तो आप काय में थे, बस में कि ट्रक में?
1: बस में थी सर, डिपो में, यहाँ पे हमीरपुर में।
0: ए दद्दा रेसो, सब ठीक ठाक है, सलामती है?
1: सर सर फट गया था सर, अभी 2 महीने से हाथ फ्रैक्चर है, अभी बिस्तर में पड़े हैं सर
0: ए दद्दा रे, तो बहुत ही बुरा हुआ। आजकल
1: जी
0: लोग
1: सर।
0: गाड़ियां वाड़ियां ठीक से नहीं चला रहे मालक,
1: हाँ हाँ सर, ऐसा भी
0: है ना? हम सब लोगों से जे कहेंगे कि सड़क पे निकलें तो थोड़ी अच्छे से गाड़ी चलाएं। और का
1: जी सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी।
0: दूसरी बार, हमें तो याद नहीं है।
1: सर अभी हुई थी ना, जब जब आप पूछ रहे थे अमिया लग गई आम में कि नहीं लगी।
0: अरे हो, अमिया अमिया, गर्मी के मौसम में बात हुई।
1: हाँ जी सर, हुई थी।
0: अच्छा जी, बताइए कि छतरपुर के क्या हालचाल? आधा बारिश हो गई?
1: हाँ हाँ सर।
0: अच्छा,
1: सर वो खेत हमारे तालाब में है ना, इसलिए डूब जाते हैं, ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक हो गई।
0: अच्छा तो का उगाते हैं अपन इन दिनों में खेत में, का चल रहा हो?
1: सर सोयाबीन, उड़दा और मूंग।
0: अच्छा, उड़दा भी उग जाती है?
1: जी सर।
0: अच्छा, जो हमारे श्रोता बुंदेली नहीं जाना तो उनको बता दें, उड़दा माने उड़द की दाल।
1: जी सर, उड़द।
0: हाँ, नहीं तो उड़दा लोग समझ ही नहीं पाए हैं।
1: जी सर, आप तो बुंदेलखंडी जानते हैं अच्छे से।
0: नहीं, थोड़ी थोड़ी जानते हैं भैया, हम सोई बुंदेलखंडी आए।
1: सर आप बताते रहते हैं ना, भोपाल में सागर में रहे हैं, तो आप तो जानते ही होंगे।
0: हाँ, थोड़ी थोड़ी, हाँ अपन बुंदेलखंडी आए थोड़े थोड़े।
1: जी सर।
0: सो आज कौन से गाने की फरमाइश आ रही ये बताओ।
1: सर हम वो वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
0: चलिए पूरी कर रहे आपकी फरमाइश, छतरपुर में आपके लाने सुनवा रहे जे गाना।
2: हमें काले हैं।

पाका नारंगी की पाका पाका त्यूता रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

में मानो गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे हरीब है तंदाना। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, ग्राम बिछिया जिला विदिशा से कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ सर।
0: कैलाश जी कैसे हैं?
1: बस सर एकदम मस्त है सर। यूनुस जी आपकी आवाज़ तो हमारे दिलों में बसी है बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुनते हैं तो समझ जाते हैं यूनुस जी आ गए हमारे।
0: अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने श्रोता हैं आप विविध भारती के।
1: बिल्कुल सर आपने सही पहचाना, कम से कम 30 साल हो चुके हैं विविध भारती से जुड़े जुड़े।
0: इन 30 सालों में विविध भारती कितनी बदली है कैलाशी?
1: प्रोग्राम तो सर एक सवाल का एक लाजवाब है सर विविध भारती के, और लगातार विविध भारती हम सुनते हैं, एकदम देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कहते हैं वो बिल्कुल सच है बात।
0: और देखिए 3 अक्टूबर को विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश करेगी, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप?
1: बस सर इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे बस सर, बस सभी लोग यूं ही विविध भारती सुनते रहे, मनोरंजन तो है ही और साथ में ज्ञान भी मिलता है सर इससे, विविध भारती से बहुत अच्छे लगता है साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं कैलाशी?
1: जी सर आज सुनना चाहेंगे फिल्म मन का है नशा, ये प्यार का नशा है, क्योंकि विविध भारती का नशा जो है ना बहुत है हमको, और वर्षों से सुनते चले आ रहा है और अच्छा लगता है ये।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेड़ टांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: वसीम भाई कैसे हैं?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ईश्वर की कृपा है और आपकी दुआएं सर।
0: आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर है ना, इससे बहुत सारी चीजें याद आ गई।
1: जी सर,
0: फिल्मों में पहले दिखाते थे रामपुरी।
1: जी, रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता है सर ये।
0: हाँ।
1: और ये इंडस्ट्रियल एरिया है रामपुर।
0: अच्छा,
1: मतलब सर यहाँ पे धानों की खेती, गन्ना, गेहूँ होता सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही पुराना इलाका है, वहाँ की तहजीब बहुत अलग है।
1: जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल साइंस से।
0: अच्छा,
1: और जब जब समय मिलता है सर आपके प्रोग्राम सुनते हैं। विविध भारती से सर बहुत पुराना नाता है और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे हेलो फरमाइश में बात हो रही है, तो अपनी खुशी सर मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रही है सर मुझे।
0: आपकी आवाज में आपकी खुशी छलक रही है।
1: जी सर, और आपकी आवाज सुन लेते हैं तो सर आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम अच्छे से पेश करते हैं सर, बहुत खुशी होती है सर आपकी आवाज सुन के सर, बस कुछ बयां नहीं कर सकते कि इतनी खुशी महसूस हो रही है सर आज।
0: शुक्रिया भाई, बताएं किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: सर मूवी का नाम है अंदाज और उसमें एक सॉन्ग है, किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, इसके बोले।
0: जी बिल्कुल।
1: और जी सर आपके लिए दो लाइन है,
0: इरशाद।
1: कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं सर आपकी जिंदगी के लिए।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये गाना रामपुर में।

0: हेलो फरमाइश
1: बहुत दिनों से बात करने चाह रहा हूँ तो आपसे आज बात हो रही है सर।
0: जी, नाम क्या है आपका?
1: मैं इस्माइल पात्रूर शरीफ तालुका मजलेगांव जिला बीड से बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल से।
0: और बताएं, विविध भारती की कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लग रहे सर, सब गाने सुनता हूँ सर मैं आपके कार्यक्रम के।
0: जी जी बहुत
1: हाँ
0: बहुत
1: सर, और
0: शुक्रिया।
1: शेर कहना चाहता हूँ सर मैं।
0: इरशाद,
1: फूलों में हंसी गुलाब है, फूलों में हंसी गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। अगर हमसे कोई पूछे विविध भारती के बारे में तो हम कहेंगे वो बहुत बहुत लाजवाब है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कातिलों में कातिल सर,
0: अरे बाप रे, कातिलों का कातिल, कौन सा गाना?
1: ये अल्लाह को खबर, ये मौला को खबर, बहुत अच्छा गाना है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: प्रोग्राम तो देखिए सर फोन इन प्रोग्राम है ये।
1: अच्छा,
0: इसके अलावा जो आप मैसेज के आधार पर जो सॉन्ग सुनवाते हैं वो, और रात में जो भूले बिस्तर गीत, और ये पिटारा के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं सर,
1: हाँ जी,
0: ये सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर।
1: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह की बात आपने कही, विविध भारती 3 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मना रहा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: सर देखिए विविध भारती हमारे दिलों का राज करता चला आ रहा है इस जमाने से
1: जी,
0: और सर यही ऐसी जो प्रोग्राम चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहें, और हम इससे जुड़े रहें, हम सुनते रहें, आप हमारा मनोरंजन करते रहें सर, इससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं।
1: आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
0: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, और गाने के बोले कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
1: वाह भाई वाह,
0: इस तरह के गाने के बोले सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही गाने के बोल बताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी हो रही है आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। कितना

0: हेलो फरमाइश।
1: उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खेटांडे से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: सर एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं आप। विविध भारती का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए कौन सा है आपकी नजर में?
1: सर मेरी नजर में सबसे अच्छा

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग होती है सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02228670288, दूसरा नंबर है 0224002462।

0: यानी 4002464662 रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से। और अब ये इल्तिजा कि जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे ये निवेदन है कि अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि हमारे नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है

0: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद शफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती काबिना का इजलास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में इस वक्त सेक्रेटेरिएट में जारी है, जिसमें कई अहम अमूर पर गौर किया जा रहा है। ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 4 अक्टूबर को करीमनगर की प्रतिमा मेडिकल कॉलेज की सिल्वर जुबली तकारीब में शिरकत करेंगे। रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और जुरत को सराहा है। और हैदराबाद के दफ्तर मौसमियात ने बताया है कि रियासत में आइंदा 4 दिन के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। रियासती काबिना का इजलास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में इस वक्त सेक्रेटेरिएट में जारी है। इस अजलास में मुख्तलिफ अहम उमूर पर गौर खोज किया जा रहा है। इम्कान है कि काबिना तफसीली तबादले ख्याल के बाद चंद अहम फैसले करेगी। इन उमूर में एल नीनो से पैदा होने वाली सूरत हाल, सेक्शन 22A से मुतालिक जमीनात का मामला और सरकारी मुलाजिमीन के लिए DA की इजराई भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिलसिला में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए मुतालबा किया कि KTR के साथ KCR हरीश राव और संतोष राव के असासाजात पर वाइट पेपर जारी किया जाए। जलसे से कबल चीफ मिनिस्टर ने वज़रा और कारकुनों के साथ तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल मार्च किया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि KCR ने माजी में बैंकरों और ताड़ी निकालने वालों मजदूरों की मदद करने और वेमुलावाड़ा की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपये फराहम करने का वादा किया था, लेकिन इन वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने 10 साल के दौरान 2,234 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि उनकी अवामी हुकूमत ने सिर्फ 2.5 साल में 1,730 करोड़ रुपये के फंड्स जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत मंदिरों की तरक्की, यंग इंडिया स्कूलों, पुलिस स्टेशनों की तामीर और किसानों के कर्जों की माफ़ी समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल कर रही है।
1: నేత కార్మికుల కోసం 1,731 కోట్ల రూపాయలు నేత కార్మికుల కోసము ఇవాళ ప్రజా పాలనలో మా ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. ఈ జిల్లాకు 350 కోట్ల నిధులు కలిపితే 2.5 ఏళ్ళ 1,700 కోట్ల రూపాయలు వేములవాడ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు ప్రజా పాలనలో మేము నిధులు ఇచ్చిన
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 4 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो 3 अक्टूबर की रात हैदराबाद पहुंचेंगे और होटल काकतिया में क़याम करेंगे। इस दौरे के दौरान 4 अक्टूबर को मेदक ज़िले के ब्रह्मनपल्ली में अमूल की जानिब से तामीर किए जाने वाले मिल्क यूनिट का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद मुनक़िद होने वाले जलसे आम से खिताब करेंगे। बाद अज़ां अमित शाह करीमनगर में वाक़ प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की सिल्वर जुबली तकारीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस दौरान ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि अमित शाह 4 अक्टूबर को करीमनगर की प्रतिमा मेडिकल कॉलेज की सिल्वर जुबली तकारीब में शिरकत करेंगे। अमित शाह के दौरे

0: 30 डिग्री, जबकि कम से कम दर्ज हरारत 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। कवाड़ीगुड़ा में वाक़े CGO टावर्स के अहाते में स्वच्छता ही सेवा 2026 प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। एक दिन एक घंटा एक साथ श्रमदान मुहिम में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के अहदेदारों और मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्रुति पाटिल ने कहा कि सफाई सुथराई सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम नहीं बल्कि इसे रोजाना की जिम्मेदारी के तौर पर जारी रखना चाहिए। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। रियासती काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में इस वक्त सेक्रेटेरिएट में जारी है, जिसमें कई अहम उमूर पर गौर खौज हो रहा है। ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 4 अक्टूबर को करीमनगर की प्रतिमा मेडिकल कॉलेज की सिल्वर जुबली तकारीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और जुरत को सराहा है। और हैदराबाद के दफ्तर मौसमियात ने बताया है कि रियासत में आइंदा 4 दिन के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाकाई खबरें अब खत्म होती हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन

हंसा मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ 65 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नज़रियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने महानदी के पानी की तकसीम से मुतालिक दरीना तनाजे के हल के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के वज़राए आला के साथ मीटिंग की। हुकूमत ने दिव्यांग अफराद के फास्टैग से इस्तिस्ना की मुद्दत को एक साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है।

0: दुबई के कप्तान स्मिथ मछार की जल्द सेहतयाबी और लंबी जिंदगी के लिए गुजरात के सभी अहम मजहबी मकामात पर खुसूसी दुआ की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुजरात के रहने वाले बहादुर कप्तान स्मिथ मचार की जल्द सेहतयाबी के लिए सोमनाथ और अंबाजी के पवित्र मंदिरों में वैदिक मंत्रों के साथ खसूसी पूजा जारी है। कप्तान के लिए मुल्क की दुआओं में शामिल होते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कप्तान मचार की गैर मामूली शुजात की तारीफ की और उनकी दिलेराना कोशिशों के एतराफ़ में उनके लिए बावकार विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड का ऐलान किया। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुबई तिल अभी परवाज जारी रखने और जिंदगियां बचाने पर फ्लाई दुबई के कप्तान स्मिथ मछार की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा हीरो करार दिया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में जनाब फडणवीस ने कहा कि मच्छार ने हाजिर दिमागी और बहादुरी का सबूत देते हुए मुश्किल सूरत हाल को संभाला। जनाब फडणवीस ने उनकी जल्द सेहतयाबी और बेहतर सेहत की ख्वाहिश का इजहार किया। फ्लाई दुबई की परवाज FZ1073 के कॉकपिट में मच्छार पर उनके को पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गए थे। ये परवाज कल दुबई से तेल अबीब जा रही थी। इसराइली वजीर आजम के तर्जुमान डेविड मेंसर ने कहा है कि फ्लाई दुबई तैयारे के अगवा की कोशिश अमरीका में हुए 9/11 हमलों से मुमासिल दिखाई देती है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहादुर भारतीय पायलट स्मिथ मछार कल ओमानी पायलट के हमले और तैयारे के निजाम को तबाह करने की कोशिश के बावजूद कॉकपिट कंट्रोल संभाले रहे। जनाब मेंसर ने कहा कि सऊदी हुकाम ओमानी पायलट से पूछताछ कर रहे हैं और उसे मुत्तहिदा अरब इमारात भेजा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वाकई की जांच और इसके बाद के मुमकिन हमलों से बचने को यकीनी बनाने के लिए इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात ने दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों को 6 दिन के लिए बंद कर दिया है। ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने माजूर अफराद दिव्यांग जंग के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स की मियाद को मौजूदा 1 साल से बढ़ाकर माजूरी की नौयत के मुताबिक 5 साल तक कर दिया है। मरकज ने अहल दिव्यांग जन और मुस्तफिदीन के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स के जारी किए जाने और तजदीद से मुतालिक रहनुमा खतूत पर नजरसानी की है। ये रहनुमा खतूत कल से नाफिजुल अमल होंगे। पहले की हिदायत के मुताबिक दिव्यांग जन के फास्टैग्स की तजदीद हर साल लाजमी थी। नई हिदायत के मुताबिक 70% से 100% माजूरी वाले अफराद को जारी करदा फास्टैग्स 5 साल तक कारामद रहेंगे, जबकि 40% से 70% तक माजूरी वाले अफराद का फास्टैग्स 4 साल तक काबिले अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नजरसानी शुदा जाब्तों का मकसद कौमी शाहराहों के टोल वसूली के निजाम को अहल दिव्यांग जन और माजूर मुस्तफिदीन के लिए ज्यादा काबिल रसाई, शफाफ और सारिफ दोस्त बनाना है। इन हिदायात के मुताबिक जिस्मानी माजूरी वाले अफराद के इस्तेमाल के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई गाड़ियों और दिव्यांग जन की मिल्कियत के तौर पर रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स जारी किया जाएगा। इसकी मियाद माजूरी के तनासुब की बुनियाद पर तय होगी। जो माजूरी से मुतालिक सर्टिफिकेट, माजूरी का मुनफरद शनाख्त कार्ड UDID और दीगर मुतालिका दस्तावेजात में दर्ज होगा। ये जाब्ते इस बात को यकीनी बनाएंगे कि टोल टैक्स से इस्तिस्ना मुकर्रा कवायद और जाब्तों नीज अहलियत की शरायत के मुताबिक जारी रहे। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: बिहार मुसलसल सैलाब की सूरत हाल से दोचार है। रियासत की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: सैलाब की सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र वजीर आला सम्राट चौधरी ने राहत और बचाव की कार्रवाई में ताउन के लिए भारतीय फजाइया से मदद तलब की है। गंडक नदी की आबी सतह में इजाफा और कई मकामात पर पुश्तों में शिगाफ की वजह से नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी भर गया है। सारण, गोपालगंज, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण और वैशाली अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। बागमती और कोसी नदियों के आबी सतह में इजाफे की वजह से दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और सहरसा जिले के कई गांव सैलाब के पानी की जद में आ गए हैं। पटना से आशीष रंजन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपने खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं फौजी जंगी यादगार और फौजी पुलिस यादगार जैसी इमारतों के क्याम के जरिए इस नजरिए को किस तरह

0: वाली शक्ल दी गई है।
1: कौमी जंगी यादगार का क्याम जनवरी 2019 में हुआ था। इंडिया गेट के करीब तामीर की गई ये यादगारी इमारत मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले भारतीय मुसल्ला अफवाज के नौजवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए वक्फ है। मरकजी यादगारी इमारत के अलावा यहाँ उन 21 बहादुर फौजियों के मुजस्मों के लिए भी मखसूस मकाम है जिन्हें फौजी खिदमात के लिए मुल्क के सबसे आला तरीन एजाज परमवीर चक्र से नवाजा गया है। इस मेमोरियल का डिजाइन फर्ज की अदायगी के दौरान फौजियों की कुर्बानी की अक्कासी करता है। 2019 में आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये मेमोरियल मुल्क के बहादुर फौजियों के जज्बे शुजात की अलामत है। प्रिया मंडल और भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: सरकार ने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख में इस माह की 31 तारीख तक तौसी कर दी है। वजारत तालीम का कहना है कि दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी से अहल तलबा को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर दरख्वास्त मुकम्मल करने के लिए इजाफी वक्त मिलेगा और मुतल्लिका अथॉरिटी की जानिब से बरवक्त तस्दीक करने में भी सहूलत हासिल होगी। अमरीका ने ईरान की वजारत दिफा और मुसल्ला अफवाज लॉजिस्टिक्स के लिए हथियार और फौजी साजो सामान खरीदने में मुबैना मदद करने की पादाश में कई ममालिक के 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं। द मीडिया लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी आयद किए गए अफराद में एक पाकिस्तानी कारोबारी समेत उससे मुंसलिक 3 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा मस्कूरा कारोबारी पाकिस्तान में कायम केविलियर ग्रुप का चेयरमैन है। ये एक प्राइवेट दिफाई कंपनी है जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक में घर में अमल है। इसके साथ ही अमरीकी हुकाम ने इल्जाम लगाया है कि यह कारोबारी कंपनी ईरान की वजारत दिफा के लिए बिचौलियों के तौर पर काम कर रहे थे और हथियारों के खरीद और तकसीम में मदद कर रही थे। इसके अलावा सऊदी अरब में कायम केवेलियर डायनेमिक्स फॉर टेक्नोलॉजीज के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई सऊदी हुकाम के तआवुन से अंजाम दी गई। अमरीकी वजीर खजाना बेसेंट ने कहा कि अमरीका इक्तसादी बायकॉट की कार्रवाई के तहत ईरान को मदद फराहम करने वाले अफराद और कंपनियों को निशाना बनाना जारी रखेगा। यह मुहिम ईरानी हुकूमत के इक्तसादी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए अगस्त में शुरू की गई थी। और जापान में जारी एशियन गेम्स 2026 में आज भारत ने 2 चांदी और 3 कांसे के तमगों समेत 5 तमगे हासिल किए। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश सिवाच ने मर्दों के 97 किलोग्राम के जुमरे के फाइनल में जापान के पहलवान यूरी निकाजातो से 0-4 से हारने के बाद चांदी का तमगा हासिल किया। इससे पहले सुबह में भारत के कश्तीराम मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबेल ने मर्दों के कश्तीराम मुकाबले में पहला चांदी का तमगा जीता। तीरंदाजी के मर्दों के कंपाउंड इन्फरादी मुकाबले में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांसे का तमगा जीता, जबकि स्क्वाश में भारतीय मर्दों और खवातीन की टीमों ने कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों की हॉकी में भारत अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 4-3 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है और दूसरी तरफ खातिन की हॉकी टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। तमगों की फहरिस्त में भारत 10 सोने, 23 चांदी और 32 कांसे के तमगों समेत कुल 65 तमगे अपने नाम कर चुका है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नज़रियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने महानदी के पानी की तकसीम से मुतालिक दरीना तनाजे के हल के लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वज़राए आला के साथ मीटिंग की। हुकूमत ने दिव्यांग अफराद के फास्टैग से इस्तिस्ना की मुद्दत को 1 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है और बिहार में कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: अभी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
1: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
0: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया।

0: आराम मखमल के कदीलों में सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल सहगल।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरूह सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरूह सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरूह साहब को प्रदान किया गया।

0: तुझे।
1: दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

फिल्मों में मजरू साहब के उल्लेखनीय योगदान के लिए 1993 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।